कार कीनो सब जग में दया जियन में पायो, कंठ लाए अपने दास राखियो, ताती वाव न लायो। अंगीकार कियो मेरे स्वामी, ब्रह्म पाओ मेट सुखायो, महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मलार महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरमुख दिसै ब्रह्म पसार, गुरमुख त्रै गुणिया विस्थार, गुरमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार, मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई है, गुर उपदेश हर विसरे हर हृदय वस्यो, सास गिरास अपना खसम त्याई है रहाओ। गुर के चरण में टोंबल जाओ, गुर के गुण अंद नित गाओ, गुर की धूड़ करो शनान, साची दरगह पाईए मान। गुर बोएथ पवजल तारन हार, गुर पेटिया ना होए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जा कहो कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर सरनाई, नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम ना पाई। मलार महला पंजवा, गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभया मिलाए, अपने सेवको ले प्रभ लाए, ता की कीमत कही ना जाए। कर कृपा पूर्ण सुविधा ते, तुमरी कृपा ते तू चित आवे, आठ पहरो तेरा रंग राते रहाओ। गावन सुन सब तेरा पहाना, हुक्म बूझै सो साज समाणा, जब जब जीवै तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ, दुख सो करते हुक्म रजाए, पाणे बख्स पाणे दे सजाए। दुहा सिरिया का करता आप, कुर्बान जाई तेरे प्रताप, तेरी कीमत तू है जाने, तू आपे बूझै सुने आप वखाने। सेई भगत जो तुद पाणे, नानक तिन कै सद कुर्बाने। मलार महला पंजवा, परमेश्वर होवा दयाल, मेघ वर्षै अमृत तार, सगले जी जंत तृपतासे, कार्ज आए पूरे रासे। सदा सदा मन नाम संभाल, गुरपूरे की सेवा पाया, ऐथै उथै निभै नाल रहाओ। दुख पन्ना पै पंजन हार, अपने जियां की कीती सार, रखण हार सदा मेहरबान, सदा सदा जाइए कुर्बान। काल गवाया करतै आप, सदा सदा मन तिसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत। एको करता आपे आप, हर के भक्त जाने प्रताप, नावें की पैज रखदा आया, नानक बोलै तिसका बोलाया। मलार महला पंजवा, गुरसरनाई सगल निदान, साची दरगह पाईए मान। ब्रह्म पाओ दुख दर्द सब जाए, सा संग सद हर गुण गाए। मन मेरे गुरपूरा सा लाहे, नाम निदान जपो दिन राती, मन चंदे फल पाए रहाओ। सतगुर जेवड़िया वरना कोए, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए। जन्म मरण दुख ते राखै, माया बिख फिर बहुन ना चाखै। गुर की महिमा कथन ना जाए, गुर परमेश्वर साचै नाए। सच संजम करनी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संगराची। गुरपूरा पाइए वडभाग, काम क्रोध लो मन ते त्याग। कर कृपा गुरचरण निवासे, कर कृपा गुरचरण निवास, नानक की प्रभ सच अरदास। राग मलार महला पंजवा, पड़ताल करती जाए को अंकार, सतगुर प्रसाद। गुर मनार प्रे दयार, स्यों रंकिया किनोरी सगल सिंगार, तजोरी सगल बेकार, ताप तो अस्थिर थिया रहाओ। ऐसे रे मन पाए कै आप गवाए कै, कर साधन स्यों संग, बाजे बजे मृदंग, अनाहद को कलरी,
राम नाम बोलै मदर बैन अत सुहिया। ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अति अपार प्रयामोग, तैसे ही संग संत बने भव उतार नाम पने। राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया, जन नानक प्रियो प्रीतम थिया। मलार महला पंजवा, मन कने प्रमे बने उमकत रस चाले। प्रमिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई, कहो बेदन काहे आने उपाव सगर किए न दुख सा कैलाहे। पज सरन साधु नानका मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा, प्रे की सोभ सुहावनी निकी, हा हा हू हू गंधर्व अपसरा, आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ। तुनत ललत गुनग अनक भांत, बहुबिध रूप दिखावनी निकी। गिर तर थल जल पवन भरपुर, कट कट लालन छावनी निकी। साध संग रामैया रस पायो, नानक जाके पावनी निकी। मलार महला पंजवा, गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हृदय अंतर तारे। रहाओ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो, गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे। बिसम बिसमै बिसम पई, अड़ग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही, प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे। जन नानक शरण दुआरे। मलार महला पंजवा, बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग। रहाओ संत संगे मन पर फड़ै, मिल मेघ तर सुहाग। कन कोर प्रीत मोर, चित चात्रक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह, त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवा, गुण गोपाल गाओ नीत, राम नाम तार चीत। रहाओ छोड़ मान तज गुमान, मिल साधुआ कै संग। हर सिमर एक रंग, मिट जाहे दोख मीत। पार ब्रह्म भय दयाल, बिनस गए बिखै जंजाल। साध जना कै चरण लाग, नानक गावै गोविंद नीत। मलार महला पंजवा, कन गरजत गोविंद रूप, गुण गावत सुख चैन। रहाओ हर चरण सरन तरन सागर, तुन अनहता रस बैन। पथक प्यास चित सरोवर, आत्म जल लैन। हर दर्स प्रेम जन नानक, कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवा, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। रहाओ प्राण नाथा नाथ सखे, दीन दर्द निवार। हे समर्थ गम पूर्ण, मोहे मया तार। अंधकूप महापयान, नानक पार उतार। मलार महला पहला, अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, चकवी नैन नींद न चाहे, बिन पिर नींद ना पाई। सूर चरै प्रयो देखै नैनी, निम निम लागै पाई। फिर भावै प्रेम सिखाई, तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा। ऐसी प्यास तसाई। रहाओ सरवर कमल किरण आकाशी, बिकसै सह सुभाई। प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी, ज्योति ज्योत मिलाई। चात्रक जल बिन प्रयो प्रयो ढेर, बिलप करे बिल लाई। कन कोर दसो दिस बरसै, बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजै जल ही ते, सुख दुख प्रभ कमाई। खिन तिल रह न सकै, पल जन बिन मरण जीवन तिस्ताई। तन वांडी पिर देश निवासी, सच्चे गुरपै शब्द पठाई। गुण संग्रह प्रभृदय निवासी, भगत रति हर खाई। प्रयो प्रयो करै सब ही जेती, गुर पावै प्रयो पाई।
प्रयो नाले सदही सच संगे नदरी मेर मिलाई। समय जियो जियो है सोई घट घट रहा समाई, गुरप्रसाद कर ही प्रगासिया सहजे सह समाई। अपना काज सवारो आपे सुखदाते गोसाई, गुरप्रसाद कर ही पिरपाया तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला, जागत जाग रहे गुरसेवा बिन हर मैं को नाही, अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच ढर पाही। इस तन धन का कहो गर्भ कैसा, बिनस्त बार न लागे बवरे हम मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहाओ। जय जगदीश प्रभु रखवारे राखे परखे सोई, जेती है तेती तुझ ही ते तुम सरेवर ना कोई। जियो पाए जुगत हथ कीनी आपे गुरमुख अंजन, अमर अनाथ सर्व सिर मोरा काल बेकाल परम पै खंजन। कागद कोट एहो जग है बपरो, रंगन चिहन चितराई। नानी सी बूंद पवन पत खोवै जन्म मरै खिनताई। नदी उपकंठ जैसे घर तरवर, सरपन घर घर माही। उल्टी नदी कहां घर तरवर, सरपन डसै दूजा मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिखिया गुरमत जारी। मन तन हेम पए सच पाया हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचै तू सर्व जिया दयाला, तुमरी शरण परे पत रखो साच मिलै गोपाला। बांदी तंद अंध नहीं सूजै, बदक कर्म कमावै। सतगुर मिलै ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण देह साच बिन साची, निर्गुण देह साच बिन काची। मैं पूछो गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावै, बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला, चातर कमीन जल ही ते सुख पावै, सारंग शब्द सुहाई। रैन बबीहा बोल्यो मेरी माई रहाओ, प्रेस्यों प्रीत ना उल्टै कबहूं जोतै पावै साई। नींद गई हम मैं तन थाकी, सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा पीवा नाम सुभाई। लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्या सिरजाई। प्रे बिन सिंगार करी तेता तन तापै, कापरे अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सकाऊ, बिन मिले नींद ना पाई। पिर नजीक ना बूझै बपड़ी, सतगुर दिया देखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझ ते मन मानिया कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला, अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अखली ऊंडी जल